जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।

सुनवालुकी सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब बरसों। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। आज भी वे बृहस्पतिवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। जो बीमारियां लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, सारी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0362656560 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0362266611। मैं हूं आपका खिदमत गुजार अबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरिहरन की आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम, पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

रेडियो SBS के जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। आशा उम्मीद है आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। भजन यात्रा का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों को वेलकम स्वागत किया जा रहा है। बीफे बृहस्पतिवार गुरुवार का दिन है। आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है। चले मिलकर अगला भजन को सुनते हैं आज की भजन यात्रा प्रोग्राम में।

सेवा में रेडियो SBS की जरिए भी आपने सुना। भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। हर सुबह ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए बस भी

0: सुंदर और सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए जो अभी आपने सुना। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले अब की बार हम आपको ले चलते हैं ये खास सुंदर भजन की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए।
1: प्रभु प्रेमी भक्तजनों, भगवान कण कण में व्याप्त हैं, लेकिन नजर नहीं आते, लेकिन वह हर पल हमारे पास रहता है। खुद भगवान ने कहा है कि भक्त संग थारो नहीं, भक्त संग छारो नहीं, सदा रहूं तिन पास, जहां न आदर भक्त का वहां न मेरो बास। मैं सदा अपने भक्तों के पास रहता हूं, चाहे भक्त कहीं भी हो, मैं उनका साथ कभी नहीं तजता। जहां मेरे भक्त का आदर नहीं होता, मैं वहां नहीं रहता। भगवान कहते हैं, जहां भक्त मेरे पैर धरत हैं, तहां धरूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छोड़ूं साथ। फिर भी भक्त भगवान से क्या कह रहा है,

सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। सुनने वालों, रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए भी अपना मोबाइल टेलीफोन, टैबलेट, आईपैड, कंप्यूटर के जरिए भी हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। बहुत सी सुनने वालों, इस वक्त प्रोग्राम सुनते हैं रेडियो SBS का, जरूर और जरूर इस प्रोग्राम को सुनते ही रहना। सुंदर भजन जो अब की बार पेश किया जा रहा है प्रसून मुखर्जी।

सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में, प्रसून मुखर्जी की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है।

प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले एक सुंदर भजन सोनू निगम की आवाज में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए सोनू निगम की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में अब की बार ये खास सुंदर भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है, खासतौर पर मिका सुखो जी की आवाज।

इसकी गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए यहाँ से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन के साथ भी भजन यात्रा का प्रोग्राम जो है आज का खत्म समाप्त होने पर आ गया है। आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से भी आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और हमारी सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

और रेडियो SBS की सर ये खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। मैशअप गीत अभी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई, आसरा उम्मीद है कि आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। 9 मिनट बाकी है सुबह 8:30 में, बाहर का मौसम की ओर देखा जाए खूबसूरत सुहाना मौसम है, धूप का मौसम और आज भी गर्मी सा मौसम होने वाले हैं।

जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। बहुत सी सुनने वालों इस वक्त मौसम का मजा लेते हैं, गार्डन में बैठे हुए हैं, हमारा रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं। भाई शांति प्रकाश डेलफाउ शहर में जो रहता है वहाँ पर भी हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं। सभी सुनने वालों जहाँ जहाँ पर भी आप सभी प्रोग्राम सुनते हैं, सभी को शुभ दिन। एट द फिल्म नो एंट्री KKN सुदीदी चौहान तकरीबन 9 बजे से पुरानी फिल्म में संगीतों का प्रोग्राम। मत भूलना अपना कॉफी या चाय तैयार करने के लिए 9 बजे से पुरानी नखमे रेडियो SBS पर जरूर और जरूर आप सुनते ही रहें।

राज्य की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में सोनू निगम और श्रेया जी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो वेज में इसकी जरिए खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। 6 मिनट बाकी है प्रोग्राम में, सुबह 9 बजे में अभी तकरीबन 9 बजे से पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जाएगा। सुनने वालों आपको खबर किया जा रहा है आज दिन में ठीक 12 बजे अफसोस के साथ मृत्यु समाचार भी आप जरूर सुनते ही रहना। ठीक 12 बजे बस प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी।

प्रोग्राम पेश किया जा रहा है सभी सुनने वालों को। शुभ सुबह शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है। हॉलैंडीज के अंदर में मौसम काफी हसीन खूबसूरत सुहाना मौसम है और सुनने वालों आने वाले दिनों टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता और भी ऊपर की ओर जाने वाले है। गर्मी सा मौसम होने वाले है और ये गर्मी सा मौसम काफी दिनों तक रहेगा जबकि हम अभी अभी

जरूर और जरूर सुनते ही रहना। यहाँ से पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में। और पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम बहुत से सुनने वालों है जो गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ सुबह की वक्त बस प्रोग्राम को सुनते हैं। तो चले आप सभी को बस स्वागत किया जा रहा है गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। चले पहला गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं माइटी मुकेश की आवाज में। कन्हैया फिल्म का गीत पेश होगा माइटी मुकेश प्रोग्राम में। याद आए आधी रात को

0: रात को
1: दमाई ढिमू की इसकी आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरों बीठे फिल्म कन्हैया का गीत आपने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में

रेडियो SBS की जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में और फिल्म का नाम था राखी। उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आंसर उम्मीद है गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का एप नंबर 030-2266-1FM। चमकता हुआ कि ही सितारा शहरुत्र से ये प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। उत्तर शहर के अंदर में कि ही रेडियो स्टेशन होता है जो सालों से बस ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। आने वाले महीना में एनन फिर तक यार होगा रेडियो SBS का ये प्रोग्राम शहरुत्र से बस ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। चले मन्ना डे की आवाज में एक गाना

मन्ना दे की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों हर एक कामों काज के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है जिस पर आप सभी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। कानपुर का टेलीफोन नंबर 24 पर अखबार एक बार होता है 032-65-65-60। वैसे हमेशा भी आप मेल कर सकते हैं और रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं और वो भी 24/7। अपना मोबाइल टेलीफोन मोबाइल फोन पर आप जाइए रेडियो SBS का वेबसाइट पर radio.sbs.nl और उसी वेबसाइट की जरिए आप मेल और रेडियो SBS का ऐप पर आप ऐप कर सकते हैं। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। आखिर गर्मी सा मौसम

और स्टूडियो के अंदर ठंडी ठंडी सा है, तो चले आपको हम ले चलते हैं किशोर कुमार की ओर, द मूवी मेरे जीवन साथी, द मैन विद एवरग्रीन वॉइस, किशोर कुमार। कितने सपने कितने

किशोर कुमार के आवाज में गाना पेश की गई फिल्म मेरे जीवन साथी, उसी फिल्म का गाना भी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। हमारी सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है और गाने पर कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, सभी को शुक्रिया धन्यवाद। देश विदेश से भी काफ़ी ऐप अंदर आते हैं, सभी को शुक्रिया धन्यवाद। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और प्रोग्राम को जरूर और जरूर सुनते ही रहना। किशोर कुमार और आशा भोसले प्रोग्राम में होगा।

प्यारा सी फिल्म से ये गाना पेश की गई किशोर कुमार आशा जी की आवाज में। खूबसूरत गाना भी आपने सुना जो आप सभी और सभी सुन वालों की सेवा में बस पेश की गई है। सुन वालों अभी से आपको याद दिलाया जा रहा है फ्राइडे 28 अगस्त रक्षा बंधन का दिन है। फ्राइडाग 28 अगस्त रक्षाबंधन का दिन है तो मुस्कुराता दुकान अभी से आपको खबर कर रहे हैं कि आने वाली सप्ताह से यहां पर आकर अपना रक्षाबंधन अपना राखी जो है आप सस्ती दामों में खरीद सकते हैं। एक से एक खूबसूरत रक्षाबंधन जो आपको आने वाले सप्ताह से सस्ती दामों में दिया जाएगी मुस्कुराता दुकान के पास जो डेनहाग शहर के अंदर में है कार्ल रोस्ट्रात नंबर 4 डेनहाग शहर के अंदर में। तो आने वाले सप्ताह से आप जाकर अपना रक्षाबंधन जो है अपना राखी यहां पर आप खरीद सकते हैं मुस्कुराता दुकान के पास। ऑनलाइन देश का सबसे बड़ा दुकान जो होते हैं जहां पर हर एक सामान आपको इंडिया भारत देश का हर एक सामान हर एक कपड़े यहां पर आपको दिया जा रहा है और खास तौर पर आने वाले सप्ताह से रक्षाबंधन भी आपको सस्ती दामों में दिया जाएगी। एक से एक खूबसूरत रक्षाबंधन

किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाज में ये गाना पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। मौसम खूबसूरत सुहाना मौसम है तो मैंने सोचा इस मौसम में ये गाना आज की प्रोग्राम में पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में हम पेश करें आप सभी और सभी सुनने वालों के लिए। सुनने वालों आपको मालूम होना चाहिए रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए दुनिया की कोने कोने तक रेडियो SBS का प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए। और हॉलैंड देश के बीच में मिड नीदरलैंड में दूर दूर शहरों में और प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में और दूर दूर शहरों में ये प्रोग्राम DAB प्लस रेडियो के जरिए भी पेश किया जा रहा है। अपना मोटर कार में अपना घरों में आप सुन सकते हैं। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे प्रोग्राम में मोहम्मद रफी की आवाज में। मोहम्मद रफी

उस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि ये गाना सुनकर और काफी पसंद किया है। 13 मिनट व्यतीत हो चुका है सुबह साढ़े 9 बजकर रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। सुनने वालों ठीक 12 बजे अफसोस के साथ मृत्यु समाचार आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जाएगी। ठीक 12 का वक्त अफसोस के साथ मृत्यु समाचार दुख की खबर आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी और रेडियो SBS की जरिए मुकेश एंड कंचन प्रोग्राम में।

रेडियो SBS के जरिए द माइटी मुकेश, द माइटी मुकेश और कंचन के आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किए गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। Utrecht, Thames Drive 237 से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चले गाना जो एक सुनने वालों बस आज के प्रोग्राम में सुनना चाहते हैं, फिल्म का नाम हीरा पन्ना, किशोर कुमार और लता जी की आवाज में। इन दिनों ये गाना खासतौर पर यूट्यूब पर काफी पॉपुलर है। पन्ना की तबन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए।

पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। ये गाना जो काफी पुरानी फिल्म का गीत है, फिल्म का नाम हीरा पन्ना, लेकिन गाना जो इन दिनों नई आवाज में नई संगीत में लाया गया है और YouTube पर भी काफी हिट है ये गाना। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। एक गाना और है, उसके बाद खबरें की ओर हम आपको ले चलेंगे। किशोर कुमार, मोहम्मद रफी एंड लता मंगेशकर, आपके दीवाने, ये फिल्म का नाम।

की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई रास्ते का पत्थर फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है ऑनलाइन देश के अंदर। सुबह दस बजकर सात मिनट व्यतीत हो चुका है। सिर्फ मिनटों ओवर तीन बीफे बृहस्पतिवार का दिन है, 9 जुलाई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। दोंदराख नई जुली का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। कौन सी सुनने वालों है जो स्टूडियो की ओर तार किया है, और सुनने वालों जो टूट से हमारा रेडियो SBS का ऐप पर भी ऐप कर रहे हैं। सुनवालो आपको खबर किया जा रहा है 21, 22 एंड 23 अगस्त मिलन सुमर फेस्टिवल होगा फॉर द 42th ईयर, द एयरस्ट एंड द ग्रोथ मिलन जो हॉलैंड के अंदर में होता है वो है 21, 22 एंड 23 अगस्त। फ्राइडे 21 अगस्त लाइव ऑन स्टेज रहेंगे लाइव फ्रॉम त्रिनिदाद फुल बैंड के साथ, फुल बैंड डीले नादान के साथ रेमोन।

Dile Nadan, Raymond Ramnarayan. सभी इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है मिलन समर फेस्टिवल .nl पर, उसी वेबसाइट के जरिए हर एक इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं क्राम फॉर यूर के लिए और अपना टिकट के लिए, उसी वेबसाइट पर आप जाइए मिलन समर फेस्टिवल .nl। मोहम्मद रफी की आवाज में एक गाना पेश होगा,

0: पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। मॉरिशस में इस वक्त भी हमेशा की तरह आज भी पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम को सुनते हैं दुष्यंत झिंगरी, और स्पेशल ये गाना मांग किया है।
1: जब मोहब्बत जवान हो

मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश की गए, जब मोहब्बत जवां होती है। मॉरिशस का रहने वाला दुशन जिंगरी ये गाना आज के प्रोग्राम में गुजारिश किया और इसी तरह से पेश की गए। असरो मीठे गाना सुनकर और बेहद पसंद किया है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर सुनते ही रहना। और ये गाना भी काफी पसंद किया, कहा कि उनके फेवरेट गानों में से ये एक फेवरेट गाना है और वो है फोर ब्यूरक की रहने वाली सोनिया। सोनिया इस गाना के बारे में कॉम्प्लीमेंट्स दिया है रेडियो SBS का ऐप पर। मेरा ख्याल से काफी सुनने वालों को ये गाना पसंद है, जब मोहब्बत जमा होती है, मोहम्मद रफी की आवाज में जो पेश की गई। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे आज की पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में। और आपको मालूम होना चाहिए इस प्रोग्राम में सिर्फ पुरानी नगमे पेश किया जा रहा है, जैसे कि ये गाना बड़ी बहन फिल्म का नाम है, लता जी की आवाज में दलित लता मंगेशकर। बड़ी बहन फिल्म का गाना काफी दिनों के बाद ये गाना।

0: बड़ी बहन फिल्म का गाना पेश की गई लता जी की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना, चले जाना नहीं। आशा करता हूं ये गाना सुनकर और काफी पसंद किया आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई। चले ऐसा ही एक और खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है। आपकी बाल लता नहीं लेकिन सुरैया की आवाज में आप सुनते ही रहना।
1: Maak je dag compleet en luister Radio SBS.
0: हाँ, सुरैया की आवाज में ये गाना काफी पुरानी फिल्म का गीत ये है, प्यार की जीत फिल्म का नाम।

सुरैया, सुरैया की आवाज में ये गाना पेश की गई प्यार की जीत फिल्म का गीत। अभी आपने सुना काफी पुरानी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई है। एक और गाना होगा, एक और इसी तरह से एक गाना होगा और अगली बार हम आपको ले चलेंगे अमीर भाई की ओर। फिल्म सहनाई, उसी फिल्म का गाना आप सुनते ही रहना।

भाई की आवाज में फिल्म सहनाई, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में आज की पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। इंडिया भारत देश नोएडा में हमेशा और हमेशा हमारा प्रोग्राम को भी सुनते हैं अरुणेश। अरुणेश ये खबर किया है कि बीते हुए रात्रि से वहां पर काफी बारिश हो रहा है, बारिश का मौसम, भीजा भीजा सा मौसम है, खूब पानी गिर रहा है, फिर भी शुभदिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। और ये सब पुरानी नगमे पर सुरैया की आवाज में जो पेश की गई तरह तरह की इंफॉर्मेशन भी इन्फो भी देते रहते हैं अरुणेश। हाँ, अरुणेश को काफी मालूम है गाने के बारे में, ऐसा लगता है हमेशा ऐप द्वारा तरह तरह की इंफॉर्मेशंस देते रहते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद अरुणेश, और प्रोग्राम जरूर इंडिया भारत देश नोएडा में सुनते ही रहना। रोटरडम शहर के अंदर में गीता रॉय भी हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं, अभी अभी स्टूडियो की ओर तार किया, शुक्रिया धन्यवाद। खनित वानतवीर, हाँ मौसम का मजा लीजिए, खूब धूप निकला हुआ है, इट इज सोनक एन अटवट वारम, हाँ खूब गर्मी सा मौसम होने वाले हैं आज और आने वाले दिनों भी, कहीं कहीं टेम्परेचर आने वाले दिनों 32-33 डिग्रीस 33 डिग्रीस होने वाले हैं, शायद उससे ज्यादा भी। तो चले अब की बार तुम हंसी मैं जवां, उसी फिल्म का गाना बस पेश किया जा रहा है सुमन कल्याणपुर की आवाज में। अफसोस के साथ भी कहना पड़ता है कि सुमन कल्याणपुर अब इस दुनिया में नहीं रहा।

काफी पुरानी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गए। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में मुकेश और लता जी की आवाज में, मुकेश और लता जी की आवाज में ये गाना भी आपने सुना जो प्रोग्राम में पेश की गए। तकरीबन 11 बजे तक पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जाएगी और आप सभी सुनने वालों को खबर किया जा रहा है कि ये प्रोग्राम हर सुबह हमारे सभी सुनने वालों के लिए बस पेश किया जा रहा है, उन सभी के लिए जो पुरानी नख्मे काफी पसंद करते हैं। चले प्रोग्राम में अबकी बार एक काफी पुरानी फिल्म का गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं। पुरानी फिल्म का गीत पेश किया जा रहा है, अगरा रूथ फिल्म का नाम है।

पुरानी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गए। सुनो सुनाए आज तुम्हें एक छोटी सी कहानी। अगर रूथ फिल्म का नाम उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई। आश्रो मीठे ये गाना सुनकर और काफी पसंद किया है हमारी सूर्यनाम जिसका कुछ गायक लोकल में भी गाए हैं लेकिन कुछ दूसरा स्टाइल में। चले प्रोग्राम में गाना जो आपकी बार पेश होगा लता जी की आवाज में, लता मंगेशकर की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना। और ये फिल्म भी 1957 का है, 1957 का।

ठीक 12 के वक्त प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जाएगी, जरूर और जरूर सुनते ही रहना। माइटी मुकेश प्रोग्राम में गुनाहों का देवता फिल्म का गीत भी शोगा।

माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई है एक पुरानी फिल्म का गीत जो अब की बार प्रोग्राम में पेश होगा। फिल्म का नाम वारिस, 1954 का फिल्म है, 1954 का फिल्म। इसी फिल्म में एक खूबसूरत गाना लाया गया है तलत महमूद और सुरैया की आवाज में। तो चले आज की पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में उस गाना को हम पेश करें। पुरानी फिल्म वारिस का गीत पेश किया जा रहा है तलत महमूद एंड सुरैया की आवाज में।

गाना भोज प्रोग्राम में पेश की गई पुरानी फिल्म वारिस से अभी आपने सुना तलत महमूद और खासतौर पर सुरैया की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आंसर उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया और खासतौर पर इंडिया भारत देश नोएडा से अरुणेश ये गाना आज की प्रोग्राम में स्पेशल मांग गया आप सभी और सभी सुनने वालों के लिए। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे और साथ ही साथ आखिरी गाना होगा आज की पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में आखिरी गाना जो होगा फिल्म जॉनी वॉकर उसी फिल्म का एक गाना मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुनते ही रहना पुरानी से पुरानी फिल्मी गाने रेडियो एसबीएस का पास बस होते हैं। हाँ रेडियो एसबीएस का प्रोग्राम जो 40 साल से ज्यादा आपके लिए पेश किया जा रहा है शहर उत्तराखंड से उत्तराखंड शहर के अंदर में और हमारे पास काफी पुरानी से पुरानी नखमे होते हैं जो अच्छी क्वालिटी साउंड में आप सभी के लिए हमारा फुल डिजिटल स्टूडियो से पेश किया जा रहा है। चले मोहम्मद रफी की आवाज में फ्रॉम द मूवी जॉनी वॉकर उसी फिल्म का गाना बस पेश किया जा रहा है। आखिरी पुरानी फिल्म का गीत पुरानी फिल्म संगीतों का प्रोग्राम में कल शुक्रवार है कल सुबह 9 बजे से फिर पुरानी नख़मे आप जरूर फिर से सुनते ही रहना 9 बजे से लेकर के और 11 बजे तक। अब वैसे आज दोपहर में 2 बजे से लेकर के 3 बजे तक हमारा आखिरी घंटे का प्रोग्राम में भी पुरानी नख़मे पेश किया जाएगी लेकिन पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम जो है हर सुबह पेश किया जा रहा है 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक। आज की प्रोग्राम में साथ देने के लिए सभी को शुक्रिया धन्यवाद। तार द्वारा आपने साथ दिया है तार किया है स्टूडियो की ओर या रेडियो एसबीएस का ऐप पर आप ऐप किया है इसके लिए शुक्रिया धन्यवाद शुभ दिन और प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। ठीक 12 बजे अफसोस के साथ मृत्यु समाचार पेश किया जाएगी।

उदित नारायण, उदित नारायण और श्रेया जी की आवाज में ये गाना वस्त्रों का भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो मीठ है। गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS के जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई। चले प्रोग्राम में अबकी बार बैनी दयाल एंड श्रेया जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

Benny Dayal en Shreya जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में आशिकिंग और साथियों की आवाज में। गाना का बोल है बारिश।

आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 2322-6611। पापोन प्रोग्राम में और पापोन की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

हमारी अधूरी कहानी है। फिल्म का नाम पापोन की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सभी सुनने वालों को वेलकम और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। कुमार सानू एनाल का प्रोग्राम में होगा।

अलका की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है।

रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। कुमार सानू एनालका

पास में ये फिल्म एक रिश्ता उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में कुछ खूबसूरत नखमे बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है हेमा सर देसाई एंड शंकर महादेवन की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

कोई चल दिया है अकेला, कोई रह गया है अकेला, ऐ दुनिया के मालिक तूने कौन सा खेल खेला। सुनवलो रेडियो SBS के जरिए यहाँ से प्रोग्राम में मृत्यु समाचार यानी कि दुख की खबर पुकारा जा रहा है। आप लोगों से निवेदन और गुजारिश किया जा रहा है गौर से सुनने के लिए। Utrecht, Overvech, Lissenstein, Dreef, nummer 23, nummer 23 से समस्त लड़कन राम खिलावन बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि गत रविवार 5 तारीख जुलाई 28 साल की आयु में स्वर्गीय लोचे राम खिलावन की पत्नी सरिता, रेशमी, माया, अजय और सूरज के मां प्रकाश, शारदा और लक्ष्को के सास विशाल, रानी और किरण के नानी शिवानी के ननिया सास इलाइना, इलाइशा और इफानो की आजी किलानी फीना, रायन, वियाइशा और इनाया के पर नानी। यूट्रेख्त, ओवरवेक्ट, लिसेनस्टाइन, ड्रेफ नंबर 23, नंबर 23 की रहने वाली सीता राम खिलावन, सीता राम खिलावन की मृत्यु हो गई है। सुनने वालों से निवेदन और गुजारिश किया जा रहा है खबर को और जान पहचान वालों तक पहुंचा देने के लिए। अर्थी के आखिरी दर्शन करने के लिए आप हर एक को मौका दिया जा रहा है। बृहस्पतिवार 9 तारीख जुलाई, डोंडरदाग 9 जुली, साफंस फन क्वत ओवर 7 तो क्वत ओवर 8 पता आपको दिया जा रहा है। उइटवाट सेंट्रम डोम स्टेड प्रोस्ट वेटरिंग नंबर 8 यूट्रेख्त लेइडसे रैन में। अर्थी सोमवार 13 तारीख जुलाई, मंडाग 13 जुली ओम 12 uur क्रेमेटोरियम डोमस्टेडे प्रोस्ट वेटरिंग नंबर 8 यूट्रेख्त लेइडसे रैन में दाह संस्कार किया जाएगी। सुनने वालों से निवेदन और गुजारिश किया जा रहा है खबर को और जान पहचान वालों तक पहुंचा देने के लिए। रेडियो SBS इन तमाम दुखित परिवारों को इस दुख की दिनों में शोक सहानुभूति पेश कर रहे हैं और ऊपर वाला से यही प्रार्थना किया जा रहा है इन तमाम दुखित परिवारों को इस दुख की दिनों में पूरा पूरा शक्ति देने के लिए। रेडियो SBS आप लोगों के दुख में पूरा और पूरा शामिल है। इसी तरह से रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना प्रोग्राम में मृत्यु समाचार, दुख की खबर जो पेश की गई है।

बारह बजकर प्रोग्राम में 10 मिनट व्यतीत हो चुका है और इसी तरह से रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना प्रोग्राम में मृत्यु समाचार दुख की खबर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है।

एक फिल्म जिसमें काफी खूबसूरत नगमे लाए गया है। इसी तरह से अभी आपने सुना अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू जी के आवास में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। फिल्म का नाम दिल है तुम्हारा। चले अब की बार फिल्म धड़कन की ओर। एक बार फिर से होगा उदित नारायण, अलका याग्निक एंड कुमार

film Dhadkan. उदित नारायण और अलका साथ ही साथ कुमार सानू देखिए आवास में ये गाना बस आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम धड़कन उसी ये फिल्म का गीत अभी आपने सुना। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और प्रोग्राम को जरूर सुनते ही रहना। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11

आप सभी सुनबलों की सेवा में उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में प्रेम अगन फिल्म का नाम उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई।

film gedaan. Radio SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना. Why should I stop being for Ladi and lose my Azadi? In short, first marriage rocks and then it is on the rocks. Conditions apply.

की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का ये प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना।

और रेडियो SBS की जरिए खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में विजय प्रकाश और गायत्री गंजवाला के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश हुआ है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अतीफ असलम।

जरूर सुनते ही रहना। चलिए प्रोग्राम में अबकी बार अलका एंड विनोद राठौड़ की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है और हम अबकी बार आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम गैम्बलर। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। बाकी हर एक इंफॉर्मेशन के लिए 24 घंटे पर दाग बराबर होता है रेडियो एसबीएस का कंटूर का टेलीफोन नंबर

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए कुमार सानू और अनुराधा पोर्टवेल की आवाज में अभी आपने सुना। अरिजीत सिंह और पलक की आवाज में एक गाना आज की प्रोग्राम में पेश

रेडियो SBS का प्रोग्राम भी आप सुन सकते हैं अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए, वो भी रेडियो SBS.NL वेबसाइट की जरिए। चलिए प्रोग्राम में विजय प्रकाश एन शरिया जी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

और रेडियो वेव्स में इसके जरिए मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए। फिल्म का नाम अनमोल घड़ी है। अनमोल घड़ी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। जरूर ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। नूर जहान की आवाज में ये गाना आप सुनेंगे जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

पेशगी गई फिल्म का नाम अनमोल धरी है, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आज की ये प्रोग्राम में जो पेशगी गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में, हम आपको ले चलेंगे अब के बार मुकेश जी की ओर। फिल्म का नाम तीसरी कसम, उसी फिल्म का ये गाना पेश किया जा रहा है।

द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना पेश की गई। ये फिल्म का नाम था तीसरी कसम। अब की बार हम आपको ले चलते हैं स्वर्गीय हेमंत कुमार की ओर, और हम आपको ले चलेंगे 1962 का फिल्म का नाम 20 साल बाद।

गाना पेश की गए स्वर्गीय हेमंत कुमार की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना जो आज के ये प्रोग्राम में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गए है। द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश प्रोग्राम में।

सभी सुनने वालों की सेवा में। मुकेश के बाद हम आपको ले चलेंगे किशोर कुमार की ओर। किशोर कुमार की आवाज में फिल्म गति पतंग का गीत अब की बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। फिल्म गति पतंग सॉन्ग बाय द मैन विद एवरग्रीन वॉइस किशोर कुमार।

पतंग का गीत पेश की गए किशोर कुमार की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए प्रोग्राम भी आप सुन सकते हैं। मोहम्मद रफी फिल्म का नाम द ट्रेन।

0: और हूँ मोहम्मद रफीक ही आवाज पे द फिल्म द ट्रेन का गीत पेश की गई। हसरो भी थे गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे, फिल्म का नाम पूरब और पश्चिम, महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज में ये गाना।
1: आओ ओए ट्विंकल।

पश्चिम उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गए महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज में। खासतौर पर दलित मनोज कुमार का खास फिल्म है फिल्म पूरब और पश्चिम जो प्रोग्राम में पेश की गई है। चले प्रोग्राम में फिल्म संगम की ओर।

Radio SBS के जरिए फिल्म संगम का गीत आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। आसरो भी थे गाना सुनकर और बेहद पसंद किया है मुकेश और आशा जी की आवाज में। अब की बार ये गाना हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम एक बार मुस्कुरा दो।

0: परेशानी।
1: मुकेश और आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है लता मंगेशकर की आवाज में और फिल्म का नाम साथी, 1968 का फिल्म, 1968 का फिल्म है, फिल्म साथी, उसी फिल्म का एक गाना पेश किया जा रहा है लता मंगेशकर की आवाज में।

गीत पेश की गई लता मंगेशकर की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई है। अब की बार हम आपको ले चलते हैं मोहम्मद रफी और लता जी की ओर, और फिल्म अदालत का गीत पेश होगा तुमसे दूर रहकर।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता।
1: सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। हमारा आज का प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। मैं आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0365656560। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब। मैं हूँ आपकी आरजे अंशली क्रमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो allemaal, dit is uw आरजे अंशली क्रमलाल die u van harte welkom heet in het programma गीतों के लहर। Wilt u reageren? Kan het altijd. Surf maar naar de website www.radiosbs.nl of bel naar de studio met 030-262-6611. Voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-265-6560. Dan gaan we naar het eerste liedje van vandaag. En dat is...

फिल्म गुड न्यूज से आपने सुना बी प्राक की आवाज में माना दिल गाने के बोल थे, और अब आप सुनिए शमशाद बेगम की आवाज में कभी यार कभी पार लगा तीरे नजर।

तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। आपने सुना मन्ना दे की आवाज में बेहतरीन गाना फिल्म सीमा से, और अब आप सुनिए आतिफ असलम की आवाज में। गाने के बोल है तेरा हुआ और फिल्म का नाम है लव यात्री।

लो मैं हारी पिया हुई तेरी जीत रे। गीता दत्त की आवाज में आपने सुना ये बेहतरीन गाना फिल्म आर पार से। ये है प्रोग्राम गीतों की लहर रेडियो SBS के जरिए से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों की लहर में है हम दिल दे चुके सनम फिल्म से। गाने के बोल है निमोड़ा निमोड़ा। कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में आप सुनिए ये बेहतरीन गाना।

0: बेबी को बेस पसंद है।
1: फिल्म सुल्तान से आपने सुना प्रोग्राम गीतों के लहर में विशाल ददलानी और बादशाह की आवाज में बेबी को बेस पसंद है। और अब आप सुनिए अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर की आवाज में फिल्म रईस से जालिमा।

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये ये ये ये सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागी।

एल्बम बद्री की दुल्हनिया से आपने सुना तम्मा तम्मा अगेन, और अब आप सुनिए ढाकर फिल्म दंगल से रफ्तार और प्रीतम की आवाज में।

0: बना दीजिए इनको किस्मत हमारी।
1: उसे और क्या चाहिए जिंदगी में, जिसे मिल गई है मोहब्बत तुम्हारी।
2: किसका चेहरा अब मैं देखूं तेरा चेहरा देख के। बेहतरीन गाना आपने सुना फिल्म तरकीब से, जगजीत सिंह और अलका याचनिक की आवाज़ में। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। फिल्म दिलविल प्यार व्यार से आप सुनिए गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम।

रेडियो SBS के जरिए से आपने सुना फिल्म खुदा हाफिज से। आप हमारी जान बन गए, मिथुन, विशाल मेहरा और अजीज कौर की आवाज में। और अगला गाना रेडियो SBS का प्रोग्राम में है फिल्म ऐतराज से। उदित नारायण और सुनिधि चौहान की आवाज में आप सुनिए गीला गीला गीला दिल गीला गीला।

देखो दिन ये न ढलने जाए. दित प्रातः लीजिए इस गजंग दोर आशा भोसले एंक वाम आयो दे फिल्म भावना. आयो दे फिल्म हाल्फ गर्लफ्रेंड इस फोल्गंत लीजिए फिया राडियो SBS गजंग दोर श्रद्धा कपूर. मैं फिर भी तुमको चाहूंगी.

बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफ़र है, धड़क आहिस्ता है ये दिल, मोहब्बत का सफ़र है। कम आउट द फिल्म जॉगर स्पार्क। Gaan we dan verder met uit de film Reis. Gezongen door Pony Pandey komt Leila met Leila.

0: मैंने कोई जादू नहीं किया, तू ही मेरे पीछे आया पिया आवाज आवाज फिल्म मुझे कुछ कहना है। दिल्ली तेज खजोहदोर कुमार सानू एंड प्रीति आवाज फिल्म यादें कम तो फोन लीजिए फिर रेडियो SBS। जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले।
1: जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले। जब दिल मिले तब गुल खिले, जब गुल खिले तब दिल मिले, मिले मिले मिले मिले दिल मिले।

थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी। बेहतरीन गाना आपने सुना अलका याचिक और उदित नारायण की आवाज़ में फिल्म मैंने दिल तुझको दिया है से। तो अब आप सुनिए फिल्म शुभ मंगल सावधान से अरिजीत सिंह की आवाज़ में राख।

लीना ओ लीना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में फिल्म स्वर्ग नरक से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है महबूबा महबूबा फिल्म अजनबी से।

सोना नहीं चांदी नहीं यार न मिला, अरे प्यार कर ले, इज द फिल्म शुभ मंगल सावधान एंड इज गजंग बप्पी लहरी आयुष्मान खुराना एंड आंद्र। गाँव दफे फेदर मैथ अव द फिल्म हम दिल दे चुके सिनम, हम दिल दे चुके सिनम, द टाइटल सॉन्ग दिस।

0: bandhen hai payal ne machaya shor was uit de film Mohabbate. Het volgende liedje is ook uit de film Mohabbate en het is Aankhe khuli ho ya ho band, didar unka hota hai. Kaise kahu main o yara ye pyar kaise hota hai.
1: Ek ladki thi deewani si, ek ladke pe wo marti thi. Nazrein chuka ke, sharma ke, galiyon se guzarti thi. चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी. कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी. जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है. और मैं सिर्फ यही कह पाता था.

0: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB Plus Radio.
1: बड़ा कीमती होता है वक्त इश्क मोहब्बत और प्यार का कभी कभी आता है ऐसा मौसम इजहार का।